0: ऐसे खुशी करके मतलब पढ़ लिख रहे हैं ना, चाहे जो विदेश हो गया तो ये सात वर्ष हो गए खत्म के
1: सबको भाई

0: यो संस्कारिक पछि राजा नयाँ दोकानमा भोट के सोचे उत्तम स्थलमा उयो दिइरहेछ
1: हजुर त आफ्नो घरले कृषि खेती गर्न सामान लिन चाहकी बर्दियाको पाँच वर्ग पशुपतिनाथ सप्लाइसमा इन्डियन इटालियन धानकटनाइबर चाइनिजो इन्डियन मिनी टेलर कम्बाइन मिल राइस मिल चारा मेसिन हार्भेस्टर साफ कटर लगायत पशु पक्षीका दाना बनाउन प्लेट मेसिन पहिलाको सँगसँगै खेती किसानी गर्न सक्ने सामान उपलब्ध भए उसका विवरण सब मेरे कृषि का मेसिन के पिछले छूट में ऊपर आ जाए खबर क्रम से घर मजा को मेरे पर आ गया था हजुर का अपना एक कृषि संबंधी कौन सामान की नजर की यदि चार टिकल से समझौते पास होने वाला पशुपतिनाथ सप्लाई था
0: संपर्क नंबर 98580-25014 हो 98224-0268
1: नवजीवन सहकारी संस्थाको पक्षमा पुरान पसलबाट ठाउँ सेवा पाँच जनालाई जानकारी गराइदिए।

बाहर से जमा यो समय में इस तो प्रयास रोग का संक्रमित को संख्या बढ़ने का दिशा बाढ़ के प्रत्याकाश धर्म उपचार को लगी आवश्यक भारी भारी का देखिए अन्य मापने

0: रेडियो पूर्वाधार एफएम द्वारा जनहित में जारी संदेश
1: आओ आओ तुम पहले सही नंबर लगी।

तथा जनसंख्या मंत्रालय एपिडेमियोलॉजी तथा रोग नियंत्रण महाशाखा राष्ट्रीय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा संचार केंद्र विश्व स्वास्थ्य संगठन नेपाल WWF नेपाल का साथ ही स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान संबद्ध।

0: 40 वर्ष पुगेपछि नियमित स्वास्थ्य जाँच गरौ।
1: चिल्लो पदार्थ माछा मासु कम खाऊ। खानामा सागपात र फलफुल खाऊ।
0: मद्यपान र धूम्रपान सेवन नगरौ।
1: स्वस्थ रहौ।
2: रेडियो गुरुबाबा FM द्वारा सङ्गीत प्रचारी सन्देश।

0: सब सीखे हमने, सब सीखते पहले तो हमें प्रॉब्लम करना सीखा, हमें कहा सीखी हमने ये बहुत कठो हमारे गाँव प्रार्थन में कठो थे इसलिए ये तो अनिवार्य सीखाई
1: रेडियो को बाबा एफएम 89.7 मेगाहर्ट्ज़।

0: शरीर को बाबा मौसम बुलेटिन में स्वागत करा मई पिंड चौधरी तथा 24 घंटा में 44 तो विगत महानगर में राष्ट्रीय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण के अनुसार सबसे ज्यादा सामान का कटाई का 17 तो घटना घट लगो उसने कहा कि का 7 बैठक 4 पहले का 9 अभी वर्षा गये को चट्टान का एक जन को ज्यादा गलत प्राधिकरण जाने के बाद चट्टान के बारे में अपन अनुभव बताई था नवी दुर्गा सामुदायिक प्रमुख अध्यक्ष दयानंद ठाकुर
1: यहाँ उपस्थित सबको जनरल हमारे मौसम सम्बन्धी हमारा सामुदायिक दल के बारे में हमने कार्यक्रम हमने गोदावरी एफएम से हमारा यहाँ ये कार्यक्रम नाम दे रहा था हमने प्रत्येक महीना के दुई चो हमने यहाँ मौसम सम्बन्धी जानकारी ली थी नाम दयाराम थारू बासगिरी नगर पालिका वडा नंबर 8 मोर्चा चाहिँ हो मैं नवदुर्गा सामुदायिक पंचायत अध्यक्ष हमने एक भिडियो हेली छत्यांग के बारे में हमारे चाहिँ पहले के पोखा थे बताई थे कि छत्यांग पर्ना से अब जस्ते पोखा लगी छत्यांग पड़ी तो अपन बाल बच्चे चाहिए घर में रखना पानी वर्षा आदि छत्यांग ज्यादा पड़े लगा तो भाई बाबा कहा करें एक उड़ान बनते मतलब फलाम के पंजा कोनो फिनो आंदा में भगा दे तो कहते कम पल सत्यांग बताए थे कि घर एक ढोरी मछी चाहिए फलाम के 300 रूप से बढ़ा के घाय दे गार दे तो सत्यांग पर तो सत्यांग के चाहिए ऊपर जो पढ़ना ऊंचा हो वो चाहिए फलाम में पान से चाहिए करें हमारे से चाहिए फलाम में पान देना मैं एक अनुभव हुई हमारे यहाँ चाहिए प्राण बर्खा घोषु कानून होकर है चट्टान हुआ कर है चट्टान पर मौका पर चाहिए लागर वो मर गए बीत गए तो हमने गाँव भर में नहीं चाहिए कहा थे लेकिन जगह कोशिश के लिए पहले से पुरखा लोग कहा थे चट्टान जी लागत तो वही कहा करे बात ढोल तछिया अरे जान मजीरा सब बजे को जाए जाए जाए जाए एक तो थे अब मंत्र पाया था ना जिले को श्री रामचंद्र भगवान की दुहाई है और मतलब वो जगह में चट्टान लागू बात होकर खाने थे जिले को तो वो कभी कभी अब अचानक होता से एक कभी कभी तो से एक कभी मुनाई हो जाए तो वही चाहे ब्यूट जीत है जाग जीत है अब आप पुरखन के कराए अब हम जाकर सुनाई देखिए हमारे से हमारे यहाँ घटना हुई बीत गई है ताकत है बजारा मनाई थे हमारा मेहन चाहे ग्रामीण छोटो तो कंट्रोल में मेहन चाहे छोट छोट फलाम के बात बंसी करेगा तो गुड़िया गुड़िया बना घर

0: लागली साथ सब्जी फलफूल सहित कम पसंद पूरा खाना ले बच्चा खाना तंदुरुस्त बनाए पूरा खाना सुन सकता दुई वर्ष सम्म किसान पालन चाहे चाहिए
1: रेडियो ग्रुपका एफएम द्वारा जनहित में जारी संदेश
2: हामीले भनेको उष्ण कुरा खाना सम्बन्धमा पछि अनि बारे सुरु गरौँ।

0: s'enterra amb el sac posat al pet. Ho vol ser? Tant postal i va posar pis que s'ha volgut mirar. A la seva, us fa tot el dia, ho va haver de pas a dir.
1: Banki rastre nikunza sitama samari shatan kalarak lagu kaikila time card kom ki hatan bilba. Banki rastre nikunza nemal kuri 3140 kilometer prati ghanta ka gati ma 14.2 kilometer duri par karna nyunatam 24 se adhiktam 28 minit samay nirdharan kaikila ma aap hata khari 24 minit kayam kaikila ko taikyanik arthen ma se उत्तरी 2124 मिनट में पार कर सेना के प्रपासन व समय लागू करना निर्णय के जनक को यह मसे यात्रा का अंतिम 60 मिनट समय बचत हुई है जना के बाद इस संबंधी पर जारी में पांच राष्ट्रीय निकुंज का अपृष्ट संरक्षण अधिकारी प्रेंद्र प्रसाद को है प्रांत और सिकुण का गणपति किम बहादुर डांगी गोहलपुर नगर पालिका नौका उड़ाता से उपेंद्र नाथ योगी वो नंबर बारह का उपराधा से त्रेन्द्र सह लगायत का सहभागी रहेगा कचहरी मसे आसमान का पर्यटन प्रवर्तन मानव पर जंतु स्वास्थ्य सड़क दुर्घटना नियंत्रण का लाभ निर्मित स्थान में सूचना तथा साइनपुर ठहरना दिए तय करेगा संघ प्रांत राष्ट्रीय निकुंज में पर्यटन गंतव्य के रूप में प्रचार कर नेपाल महानगर पालिका सहित संबंधित निकायों से समन्वय कई खड्डुआ नाका सांसद चौक नेपालगंज विमान स्थल गोरखपुर चौरखामा बड़ा होर्डिंग पोर्ट तथा सूचना पोर्ट करना चनाकिल का कचहरी मानी कुंज संरक्षण संघ पर्यटन प्रवर्तन स्थानीय विकास सड़क चोर का आगे बढ़ना विषय में समेत छलफल मिलक चनाकिल का आप राष्ट्रीय समाचार बपारे बिंदु से
2: बागमती प्रदेश का नवनियुक्त मुख्यमंत्री किरण थापा मगर शपथ लेगा आज दिन को एक समारोह बीच मुख्यमंत्री थापा मगर प्रदेश प्रमुख दीपक प्रसाद देव के पास से पद तथा गोपनीयता का सौगात ग्रहण कर रखी गई लंबा समय पर मुख्यमंत्री में नियुक्त हो जाएगा थापा मगर अपन दल नेकपा के बारे नेकपा समर्थन जिला महानगर पालिक एक दस तीन वर्ष बालिका गरिमा चौधरी घटना दुर्घटना का विरोध में स्थानीय वासी सड़क अवरुद्ध गरेका प्रदर्शन गर्नुबाट जिला प्रहरी कार्यालयमा आर्थिक प्रदर्शन जारी रोक चलेको मुताबिक बिहानी से प्रदर्शन गरिएका पीड़ित परिवार तथा स्थानीय पठन रैया बिलकज सड़क खंड में टायर पार का प्रदर्शन करते सड़क ठप्प पर्न पीट प्रदर्शनकारी घटना संलग्न दोषी होना कड़ा कार्यवाही कर महापुर सड़क अवरुद्ध हुई बेल बिलकज पठन रैया खंड में सैन्य सवारी साधन तथा यात्री कल्पना पलक प्रहरी चाहिए गए श्रावण 31 गति से तीन वर्ष गरिमा का हत्या उदिन प्रहरी चलने के बाद घटना में संलग्न आरोपी आरोप में प्रहरी दुई जन पकड़ कर
1: राष्ट्रीय समाचार संग हमार संदेश का समय बुराई लागल बा हमार संदेश लोहिना से पहला मुख्य मुख्य संदेश भी फैला बांसवाड़ी नगर पालिका और कर्मचारी हमार जहाँ का पहला पुरान घटना में आप विलक जस्त देखना में का सामाजिक संचार तथा संचार माध्यम प्रकाशित तथा प्रसारित वीडियो हमारे वो समाचार प्रति कम और गंभीर ध्यान आकर्षक विलक जाने लगा वो बागमती प्रदेश का नवनियुक्त मुख्यमंत्री किरण थापा मगर शपथ ले अब हमारा संदेश रहा कल बिहार 7 बजे नेपाली भाषा हमार संदेश लिख हरे पार्टी तब समग्र समाचार कक्ष का सबको सक्रिय होगा प्राथमिक संग्रह गौरी शंकर संग सक्रिय बिंदु उमय कुमार कविता बिंदु रेडियो के माध्यम से सुनती रहनी चाहिए।

0: अपेक्षा युद्ध तथा प्रसन्न स्वास्थ्य संबंधी सभी जानकारियों को हासिल कराओ या कानून को प्रभावकारी कार्यान्वयन कराओ।
1: बाल विवाह को छोरा छोरी को सपना जगाओ, शिक्षित सक्षम जिम्मेवार पुस्ता निर्माण करो। जनहित का लागि महिला सशक्तिकरण स्रोत केन्द्र उयासी सामुदायिक रेडियो उदयपुर र सिआइएन समाज क्षेत्रको अन्तर्गत लागि यो सामुदायिक सूचना नेटवर्क सिआइएन।